जुगो जुग टल चवर शतर तख्त दे मालक हाजरा हजूर जारा जहूर शब्द गुरु बाणी के बोहित अमृत के दाते दसा पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच शामा वेले दे सजे दवाना दियां हाजरियां भर रहे अति सत्कार योग सन्मान योग सतसंगी जनों सतगुरां ने बड़ी अपार बख्शिश रहमत कीती है। आप सब गुरुदेव दे पावन दरबार दियां हाजरियां भरदिया मेरे तो पहला गुरु घर के रागी सिंघा पासों सतगुरु की अमृतमयी बाणी दे कीर्तन श्रवण कर रहे सी। तो आओ सात संगत समा है लड़ीवार चल रही भगत बाणी दे विच्चों भगत कबीर साहब जी दे पावन श्लोकां दी विचार दा। तीन समय गुरु घर दे विच गुरबाणी दी विचार हुंदी है। अमृत वेले जो सतगुरु पावन मुख वाक उपदेश आवाजा बख्शदे ने उस दी विचार हुंदी है। उस तों बाद लड़ीवार समुच्चे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी लड़ीवार कथा चल रही है जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंक 337 दे उत्ते पहुंची है। ते शाम नूं आपां भगत बाणी दे विच्चों भगत कबीर साहब जी दे श्लोकां दी लड़ी दी विचार कर रहे हां। तो आओ साध संगत जिन्ने शरीर आप सतगुरां दे हजूर बैठे हो जां घरां विच मीडिया दे माध्यम राहीं श्रवण कर रहे हो आपस विच फतेह दी सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कबीर साहब ने अज दे इस पावन बचना विच एक उस ताकतवर शै दा जिक्र किया है जिहड़ी सारे संसार नूं भरमा रही है। तो वो ताकतवर शै है किहड़ी है? तो वो कहिंदे ने कबीर साहब वचन रखते ने कहिंदे ने इहनूं नाश करना बड़ा औखा है। वैसे तो दुनिया की हर चीज नाशवंत है आपां वेखदे हां। बाणी ने अटल सच्चाई बयानी है कि जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल। पर एक चीज ऐसी है जिन्हों मनुख द्वारा नाश करना डिसमेंटल करना बड़ा औखा हो जाता जिन्हों अपने जीवन विच्चों पासे करना बड़ा औखा है। तो जे उन्हों जीवन विच्चों पासे कर दिता जाए जे उन्हों नाश कर दिता जाए तो जिंदगी दियां बहुत सारिया उलझना जिहड़ियां ने वो ठीक हो सकदियां ने। तो वो शह है किहड़ी है? तो कबीर साहब ने बड़ी बख्शिश की। उन्होंने आख्या सारी सृष्टि धरती ते आकाश दो शब्द उन्होंने वरते ने धरती ते आकाश विच समुचा संसार आ जाता। एक ख्याल करियो जदों भी गुरु साहब

अपने जमाने दे वेच उस समय ते गुरु प्यारे इहदा शिप डुब गया तो भाव कि एक बरेते दे उत्ते जा चढ़िया और उस जगह दे उत्तों इहदा बैक आना रेता दे उत्ते जदों टिक जावे तो उहदा बैक आना बहुत मुश्किल हुंदा ते उह अरदासां कीतियां पे धन गुरु नानक की गद्दी के सामने सच्चे सतगुरु धन गुरु गरीब नवाज गुरु नानक महाराज जी के चरणों अरदासां बेनतियां कीतियां गरीब सतगुरु तुसीं गरीब नवाज हो मेरा डुबदा बेड़ा बन्ने ला दो। ते ऐसा एक फिर तूफान आया एक छल आई है ते वह जिहड़ा बरेते दे उत्ते रेता दे उत्ते टिकिया जहाज सी ना जदों पानी दी छल वजदी आ ते उपर नूं उठदा रेता जिहड़ा खुब गया सी उपर उठिया एकदम ते गुरु प्यारिओ जदों पानी दी छल वापस जांदी है ते वह फिर समुंदर दे विच जाके तैरन लग पिया। इस तरह बेड़े बन्ने ला दिंदा इह जदों इहदे चरणां दे विच आपां अरदासां बेनतां करिए अपणियां ते अरदासां वी निक निकियां हुंदियां दुध बख्शी पुत बख्शी रिजक बख्शी चौधर बख्शी ट्रक बख्शी घर बख्शी अपनियां इदां दियां निक्कियां निक्कियां अरदासां उह इत्थे डुबदे बेड़े बन्ने लाउण वाला इह ते सानू विश्वास ते होना चाहीदा। इहने अरदास कीती सी अरदास पूरी हो गई इहने 500 मोहरां सुक लईआं हुण जदों गुरु बाबा नानक जी दे चरणां दे विच आउंदा पता करदा है कि उह गुरदेव पातशाह कित्थे ने अठवें पातशाह जी ज्योति जोत समा चुके सन ते अंतम समय दे विच उहनां ने आख दित्ता सी बाबा बकाले बकाले दे विच इशारा करता सी वी बकाले विच आ बैठा अगली जोत जिहड़ी आ उह बकाले दे विच आ। हुण इह मक्खण शाह लभदे लभदे बकाले दे विच आउंदे ने 400-500 बंदा इहदे कोल है और नाल संगतां वी आ इहदे नाल बाडीगार्ड वी आ इहदे। हुण बकाले विच आके देखदा 22 जाने उत्थे बैठे उत्थे एक गुरु नहीं धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी ने ते एक वल इशारा कीता सी ते उत्थे लोटुआं दा टोला आके बैठा दुनिया नूं लुट्टण वाले भेखी पखंडी बैठे। गुरु प्यारिओ इह किते पखंड जिहड़ा अज तों थोड़ो चलदा आ वी जे आखीए वी साडे गुरु साहिबानां दे शरीक बण के अज वी साध बैठे होए आ ते इह आपां विचारन दा यतन करिए सिख सुचेत होना चाहिदा सिख बुद्धि वाला होना चाहिदा है परख सिख ने करनिया पखंडी तुहानू थां थां दे उत्ते मिलणगे पर गुरु प्यारिओ सिख दी सोझी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची दा इह आपां सबूत देना कि साडे सिखां दी मत उच्ची है इस गल दा सबूत दईए आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी तों बगैर होर किते जाके जदों ना चुके ते इहनां पखंडियां दे डेरे खत्म हो सकदे आ और उह जिद्दां उत्थों डेरे बाबे बकाले डेरे लगे सीगे बाईआं दे डेरे ला लै पर जदों संगत नूं पता लग गया ज्ञान प्राप्त हो गया ते बाईआं दे डेरे उजड़ गए इक्को ही डेरा रह गया धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दा। हुण गुरु प्यारिओ जदों इह इत्थे आउंदा है पुछ पड़ताल कीती जांदी है इहने मोहरां सुखियां सी भी मैं 500 मोहरां लैके जावांगा दर्शन करांगा नाले मैं मत्था टेकांगा ते जदों जाके देखिया 22 बैठे आ हुण इह सच ते झूठ दा नतारा करन वास्ते इहने 2-2 मोहरां सारिआं दे सामणे मत्था टेकणियां शुरू करतीआं भी जे इहने भावना मन च रखी भी जिहड़ा सच्चा होया ना जिहड़ा अंतरजामी होया उह आपे उहने मंग के लै लैणे आ। हुण जदों बाकी बाईआं दा मत्था डम के इह मक्खण शाह होर किस लोकां नूं संगतां नूं पुछदा ओए आ ते सारे झूठे निकले इह ते सारे पापी है गुरदेव पातशाह दे शरीक बण के बैठे आ मैनूं दसो इत्थे होर भी कोई हैगा कोई होर भी गुरु हैगा। धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी दे परिवार विचों ते बकाले दे लोकां ने दस्या हाँ इक हैगा तेग बहादुर जी है उहनां दा नां ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਭੁੱਖਾ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਚਿਹਰਾ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ।

0: पूरे आदर दे नाल महाराज नो, पूरे आदर दे नाल महाराज नो फिर दिता गुर गद्दी ते बिठा, पूरे आदर दे नाल महाराज नो फिर दिता गुर गद्दी ते बिठा,
1: आदर दे नाल महाराज नो फिर दिता गुर गद्दी ते बिठा, पूरे आदर दे नाल महाराज।

0: सुन संगता कठिया होइया सुन संगता कठिया केरा लेहा महाराज नूपा होइया सुन संगता कठिया केरा लेहा महाराज नूपा
1: सुन संगता कठिया नहीं होइया सुन हां सुन संगता कठिया केरा लेहा महाराज नूपा होइया सुन संगता कठिया ओ केरा लेहा महाराज

0: यथा शक्ति चढ़ावा रख सामने रे हरि एक शीस झुका यथा शक्ति चढ़ावा रख सामने रे हरि एक शीस झुका
1: शक्ति चढ़ावा रख सामने रे हरि एक शीस झुका यथा शक्ति चढ़ावा रख सामने और

जप गुर गोपाल प्रभ सोई, जा की शरण पया सुख पाइए, बहुड़ दुख न होई रहाओ। वडभागी सद संग प्राप्त, तिन भेटत

जिसनो गुरमुख या बुझाए सो सद ही दरगाह पाए मान। जिस दी पैज रखे हर स्वामी सो सच्चा हर जान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला पंजवां। हर नाम ना सिमरै साध संग, तैं तन उड़ै खे। जिन कीती तिसै ना जाने, नानक फेटे लूणी दे। धन वाहिगुरु साहिब जी, धन वाहिगुरु साहिब जी। अमृत बाणी हर हर तेरी। सोना सोना हो वै परम गत मेरी, चरण बुझी शीतल होए मनुआ। सतगुर का दर्शन पाए जियो, दुखारी महला पहला।

सतगुर शब्द दिखा लिया राम। गौर शब्द दिखा लिया सच संभालिया, एनस देख बिचारिया। धावत पंच रहे कर जानिया, काम क्रोध बिख मारिया।

सो प्रभु गुरु मुख जानया, करण कारण समराथे अपारा, त्रिविध मेट समाई, नानक अवगुण गुण समाने, ऐसी गुरमत पाए। आवण जान रहे चूका पोला राम, हमें मार मिले साचा चोला राम। हाँ मैं गुरु खोई प्रगट होई, चूके सोग संतापे, ज्योति अंदर ज्योत समाणी, आप पछाता आपे।

चुकी कान लुकाने तुखारी माला पहला फूल आवड़े फुली फुल फुल पछो ताने फिर छोटेड़ी सुती फिर की सार न जाने।

पसमा टेरी। बिन अपने ना है कोई ना चाहे, क्या कहिए क्या कीजै। अमृत नाम रसन रस रसना, गुर शब्दी रस पीजै। विण नाम को संग ना साथी, आवे जाए कनेरी। नानक लाहा लै कर जाइये, साची सच मत तेरी। साजन देश विदेशियड़े, सा नेहड़े दिंदी। सार संभाले तिन सजना, मुद नैन भरेंदी। मुंध नैन भरेंदी, गुण सारेंदी। क्यों ब्राह्मणा प्यारे, मार्ग पंथ न जानो विखड़ा। क्यों पाइये फिर पारे। सतगुर शब्दी मिले विशुनी, तन मन आगे रख। नानक अमृत बिरख महारस फले, आ मिल प्रीतम रस चख। महल बुलायड़िए बिलम न कीजै। आन दिन रतड़िए सहज मिली जय, सुख सहज मिली जय। रोस न कीजै गर्भ निवार समाणी, साचे राती मिले मिलाई। मन मुख आवण जाने जब नाचे, तब घूंघट कैसा मटकी फोड़ निजारी। नानक आपे आप पछाणे, गुरमुख तत् बिचारी। तुखारी महला पहला। मेरे लाल रंगीले, हम लालन के लाले। गुर अलखल खाया, अवर न दूजा पाले। गुर अरख लखाया, जा तिस पाया। जा प्रभु कृपा तारी, जग जीवन दाता पुरख विधाता। सहज मिले बनवारी, नदर करें तू तारे तरिये। सच देवो दीन दयाला, प्रणवत नानक दा संदासा। तू सर्व जिया प्रतपाला।

प्यारे, सच कर खोज लहे साचा गुर थानो, मन मुख न पाइये गुरमुख ज्ञानो। देवै सच दानो सो परवानो, सद दाता वड दाना, अमरिया जोनी अस्त्र जापै साचा महल जराना। दोत उचा पत लेखना लिखी है, प्रगटी जोत मुरारी, नानक साचा सच है राचा, गुरमुख तरिये तारी। तुखारी महला पहला। ए मन मेरिया तू समझ अचेत, ए आण आराम, ए मन मेरिया छड़ अवगुण गुणी समाण आराम। बहु सात लुभाने कृत कमाने, बिछुड़िया नहीं मेला, क्यों दो तर तरिये जम डर मरिये, जम का पंथ दुहेला।

बंधन बांधया इन बिद छूटे गुरमुख सेवै नर हरे। ए मन मेरिया तू छोड़याल जंजाला राम, ए मन मेरिया हर सेव पुरख निराला राम। हार सिमर एक अंकार साचा, सब जगत जिन्ह उपाया, पौन पानी अगन बांधे गुर खेल जगत दिखाया। आचार तू विचार आपे, हर नाम संजम जप तपू, सखा सैन प्यार प्रीतम, नाम हर का जप जपू।

गुण गाय राम रसाए रसियें गुर ज्ञान अंजन सारे त्रै लोक दीपक शब्द चानन पंच दूत संघारे।

चवा प्यारे शब्द निस्तारे, बिन देखे तृप्त न आवे। शब्द श्रृंगार होवे नित कामण, हर हर नाम ते आवे। दया दान मंगत जन दीजै, मैं प्रीतम देव मिलाए। आन दिन गुरु गोपाल त्याई, हम सतगुर विटों कमाए। हम पाथर गुर नाम, बिख पव जल तारिये राम। गुरुदेव शब्द सुभाए, मैं मूढ़ निस्तारिये राम। हम मूड मुगद किश मित नहीं पाई, तू अगम वट जाने आ। तू आप दयाल दया कर मेले, हम निर्गुणी निमाने आ। अनेक जन्म पाप कर परमे, हुण तो शरणागत आए। दया करो रख ले वो हर जियो, हम लागे सत गुर पाए। गुर पार समलो मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम। काया गढ़ सोहया मेरे प्रमोहया, क्यों सास गिरास विसारिये। अदृष्टिय गोचर पकड़िया गुर शब्दी, हों सतगुर कै बलिहारिये। सतगुर आ गए सीस पेट देओ, जे सतगुर साचे पावे। आपे दया करो प्रभ दाते, नानक अंक समावे। तुखारी महला चौथा, हर हर अगामे अगाद, अपरंपर अपरपरा। जो तुम ध्याम जगदीश, ते जान पौ बिखम तरा। बिखम पौ तृण तरिया सुहेला, जिन हर हर नाम ते आया। गुर वाकस्त गुर जो पाए चले, तिन हर हर या मिलाया। ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी, हर कृपा कर तरणी तरा। हर हर अगम अगाध, अपरंपर अपरपरा। तुम स्वामी अगामे था, तू काट काट पूर रहया। तू लख प्यो अगम, गुर सत गुर बचन लहया। धन धन तेजन पुरख पूरे, जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे। विवेक बुद्ध विचार गुरमुख, गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे। जा बह गुरमुख हर नाम बोलें, जा खड़े गुरमुख हर हर कहया। तुम स्वामी अगम अथाह, तू कट कट पूर रहया। सेवक जन सेवें ते प्रवान, जिन सेवया गुरमत हरे। तिनके कोट सब पाप, किन पर हर हर दूर करे। तिन के पाप दोख सब से, जिन मन चित एक यारा दिया। तिनका जन्म सफड़ियो सब किया, करते जिन गुर बचने इस छिपाखिया। ते तन जन वड पुरख पूरे, जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे। सेवक जन सेवै ते प्रवान, जिन सेवया गुरमत हरे। तू अंतर जामी हरे आप, ज्यो तू चलावे प्यारे हो तवे चला। हमरे हाथ किश ना है, जा तू मिले ता हूं आए मिला। जिन को तू हर मेले स्वामी, सब तनका लेखा छुटक गया। तिन की गणत ना करो को पाई, जो गुर बचनी हर मेल लया।

जिन जपया हरते मुकत पराणे तिनके उजल मुख हर द्वार ओए हालत पलत जन पै सुहेले हर राख लिए रखन हार। हर संत संगत जन सुनो पाए गुरमुख हर सेवा सफल बने तू जल तल मैयर भरपूर सभी उपर साच तने तू थान थन अंतर हर एको एक रव्या वाण त्रिण त्रि पवन सब श्रेष्ठ मुखर हर नाम चव्या। सब चवै हर हर नाम करते असंख या गणत हर त्यावै सो तन तन हर संत साधु जो हर प्रभु करते पावै।

तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवै मेरे स्वामी तिस मिलै जिस कै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिकै हर गुण हृदय टिकै तिस कै जिस अंतर पौ पावनी होई बिन पै किने न प्रेम पाया बिन पै पारना उतरिया कोई।

तीर्थ उद्यम सतगुरु की या सब लोक उधरणे अर्था मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा। प्रथमे आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब हुआ खबर पई संसार आए त्रैलोआ। देखण आए तीन लोक सोर नर मुन जन सब आया जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा तन के किल विखनास गवाया।

द्वितीया जमन गए गुर हर हर जपन किया, जागाती मिले दे भेट गुर पिछे लंघाए दिया। सब छुट्टी सतगुरु पिछे, जिन हर हर नाम ते आया, गुर बचन मार्ग जो

गुर के नाय लय सब छुटक गया। द्वितीया जमन गए गुर हर हर जपन किया। तृतीया आए सुरसरी ते कौतक चलत पया। समोही देख दर्शन गुर संत किने आठ ना दाम लया।

पे जागतिया उपाव सियाणप कर विचार डिठा पन बोल का सभी उठ गया तृतीया आए सुरसरी तें कौतुक चलत पया। मेले आए नगर महाजना गुर सतगुरी उठ गई गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही। सिमरत शास्त्र सबने सही कीता सुख प्रहलाद श्री राम कर गुरु गोविंद ते आया।

कीर्तन पुराण नित पुन होवै गुर बचन नानक कर भगत लही। बिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही। तुखारी संत महला पंजवां।

सकल गुणा के दाते स्वामी बिना सुनो एक दीना देह दर्श नानक बलिहारी जीअड़ा बाल बाल की ना एह तन मन तेरा सब गुण तेरे कन्या मन्या दर्शन तेरे सुन ब्रह्म मेरे निमुख दृष्टि पेख जीवा अमृत नाम सुनिजे तेरा कृपा करें ता पीमा आस प्यासी फिर कहता है जो चात्रक बूंदे रे को नानक जीड़ा बलिहारी देव दर्श ब्रह्म मेरे तू साचा साहिब शाय मिता तू प्रीतम प्यारा प्राण हित जिता प्राण सुखदाता गुरमुख जाता सगल रंग बने आए सोई कर्म कमावे प्राणी जेहा तू फुरमाए

ढाकन हारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते अविनाशी अभिगत स्वामी पूर्ण पुरख विधाते।

सतगुरु के चरण धोए तोए पूजो, इन बिद मेरा हर प्रभ लहोरे रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखै रस, इन संगत ते तू रहोरे। मिल सत संगत कीजे हर गोष्ठ, साधु स्यों गोष्ठ। हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन, हर राम नाम राम रमोरे। अंतर का अभिमान जोर तू किश किश किश जानता, ए दूर करो अपन गौरे। जन्नान कहो हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की तूर कर हरे। केदारा महला पंजवा कर दूजा, एको अंकार सत गुर प्रसाद, माई संत संग जागी। परे रंग देखै जपती नाम निधानी रहाओ, दर्शन प्यास लोचन धार लागी, बिसरी त्यास बिडानी। अब गुर पायो है सहज सुखदायक, दर्शन पेखत मन लपटानी, देखत मोदर रहस मन उपजियो, नानक प्रे अमृत बानी।

अनेक जतन गवन करो खटकर्म जुगत ध्यान तरो उपाव सगल कर हारियो नै नै होटें बिकराल। शरण बंदन करुणापते पव हरण हर हर हर हरे एक तू ही दीन दयाल। प्राभ चरण नानक आसरो उदरे ब्रह्म सागर लग संतना पग पाल। केदारा माला पंजमा कर चौथा एक ओंकार सत गुर प्रसाद शरणी आयो नाथ निदान। नाम प्रीत लागी मन भीतर मांगन को हरदान राव। सुखदाई पूर्ण परमेश्वर कर कृपा राखो मान। दे प्रीत साधु संग स्वामी हर गुण रसन बखान। गोपाल दयाल गोविंद दमोदर निर्मल कथा ज्ञान। नानक कौ हर कै रंग रंग चरण कमल संग ध्यान। केदारा महला पंजवा हर के दर्शन को मन चाओ। कर कृपा सत्संग मिलाओ तुम देवो अपनो नाओ राओ। करो सेवा सतपुरख प्यारे जात सुनिए तत मन रह साओ। वारी फेरी सदा कुमाई कवन अनूप तिर चाठाओ। सरब प्रतपालें सगल संभालें सगलियां तेरी छाओ। नानक प्रपुरख बिधाते कड़ कड़ तुझे दिखाओ। किदारा महला पंजवां प्रे की प्रीत प्यारी मगन मने मैं चितवो आसा। नैनो तार तुहारी रहा ओए दिन पहर मूरत पल कैसे। ओए पल करी के हारी खुले कपट तपट बोझ तृष्णा जीवों पेख दरशारी। कौन सो

शरण समराथ वकाथे गोचर हर समर्थ दुख लाथ नानक दीन तूर जन बांशत मिले लखतर मात। केदारा महला पंजवा कर पंजवा एको अंकार सत गुर प्रसाद बिसरत नाए मनते हरी।

परि महानाद कुरंक मोहयो बेद तीक्ष्ण सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांतरी केदारा मल्ला पंजवा प्रीतम वस्त रिद मैं खोर परम प्रीत निवार ठाकुर गैले अपनी ओर रहाओ। अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारु तोर संत संग हर चरण बोहित उदरते ले मोर। गर्भ कुंट में जने तारियो ने बिखे बन में होर हर सकत शरण सम्राथ नानक आन नहीं निहोर किदारा महला पंजवा। रसना राम राम बखान गुन को पाल्यो चार दिन रैन पै कल मलहान रहा। त्याग चलना सकल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आसा चूठ सर पर मान।

गुर बचन कार्य सर्व पूर्ण इति उतना हली प्रभ एक अनक सर्वत पूर्ण बिखय अगन्ना जली गैप।

हर के नाम की मान रुचै, कोट शांत आनंद पूर्ण, जलत साती बुझे रहाओ। संत मार्ग चलत परानी, पतित उधरे मुचै। रेण जिनकी लगी मस्तक, अनेक तीर्थ सुचै। चरण कमल त्यान पीतर, कट कट स्वामी सुजय। शरण देव अपार नानक, बौर जमने लुजय। केदारा शंत महला पंजवां।

पूर रह या सर्वतर में सो पुरख विधाता मार्ग प्रभु का हर किया संतन संग जाता। संतन संग जाता पुरख विधाता काट काट नदर निहालिया जो शरणी आवे सर्व सुख पावे तिल नहीं पन्ने कालिया। हर गुण नित गाए सह सुभाए प्रेम महारस माता नानक दास तेरी शरणाई तू पूर्ण पुरख विधाता।

या कटकटपुर समान्या सुख सागर पाया सह सुभाया जन्म मरण दुखारे कर गै लीने नानक दास अपने राम नाम उर हारे। सुख सागर पाया सह सुभाया जन्म मरण दुख हारे कर गै लीने नानक दास अपने राम नाम उर हारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतग्रंथ पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कार योग सतसंगी जनों वडभागे जिथे आप जिया ने अमृत वेले दे पावन सजे हुए दरबार दियां हाजरियां भरदियां लड़ी बार चल रहे श्री सहज पाठ दे राही पावन बाणी दा आनंद माणिया। समा है शब्द चौंकी आसा की वार दे कीर्तन दा सेवा निभाउणगे भाई हरमनदीप सिंह जी। हजूरी रागी जत्था सचखंड श्री दरबार साहब अमृतसर वाले आउतना पासों सतगुरां दी पावन बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

राजीराम निरपव निरंकार सचनाम जाका किया सरल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिन्नी रहन जिना मन चाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लगाए पार कोलू चरका चकी।

पय कृत नचे सब कोई नच नच हसे चले से रोए उड़ना जाहे सदना हो हे नचन कुंदन मन का जाओ नानक दिन मन पाऊ उतना मन पाऊ पौड़ी।

लख तप उपर तीर्था सहज जोग बेबाण, लख सुरतन संग्राम रण में छुट्टे प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण।

सितंबर स्वामी सच में अच्छा साथ रहे, सब कुछ सच समावे, रिग कह रहे आ भरपूर। राम नाम देवा मैं सूर, नाए लई है प्रचत जाहे, नानक तो मुख त्रपाहे।

0: जैसनों गौरमुख आप बुझाए, सो साध ही दरगाह पाए मान। जिस दी पैज रखे हर स्वामी, सो सच्चा हर जान। जिसनों गुरमुख आप बुझाए, सो सद ही दरगाह पाए मान। जिस दी पैज रखे हर स्वामी, सो सच्चा हर जान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे, गुरु सवारे, अति सत्कारयोग सतसंगी जिन्हों वडभागे हम, जिथे आप जिया ने गुरु दर दे सत्कारत कीर्तनी जिथे पासों शब्द चौंकी आसा की वार दे कीर्तन सरवण कीते ने। सरबादे भले की अरदास उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश की है, पवित्र उपदेश आप संगत ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित सरवण किए ने। समा है पावन मुख वाक की कथा विचार का। सेवा निभाउणगे सत्कार योग भाई गुरशरण सिंह जी चीमा, और तिना पासों पावन मुख वाक की कथा विचार सरवण करिए जी। भुला चुका दिखेमा आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम। वाहिगुरु साहिब जीओ। डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु।

कोट परादू हमारी खंडो, अनक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मातु थोरी, तुम्हें आपनों बिरद रखावो।

मारे सज्जन एक करूं बेनंतिया, एक बेनती है तेरे अगे। तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खुजंतिया, उस मोहन लाल रब नू मैं मोह लैण वाले प्यारे रब नू मैं खोजदी फिरदी हां। तिस दस प्यारे आख्या उहदा राह ते दस, वेख मैं किड्डी वड्डी कुरबानी करन लई तैयार हां। तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक भोर